0: हेलो जिमी, राहुल आ गया अपने एंट्री पॉइंट पर।
1: नहीं राहुल तो यहाँ नहीं है।
0: अरे वो भी राहुल यहाँ पर नहीं है। दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढोगे प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया।
2: श्रुति,
1: राहुल मिला क्या?
2: नहीं।

आकाशवाणी सुनने वालों भाइयों और बहनों और प्यारी दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आई एम योर फ्रेंड आइडियो वेलकम यू टू दिस वीक्स एडिशन ऑफ जेम्स ऑफ इंडिया विच कम्स टू विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड बेस्ट विशेस ऑफ एमसीएन रेडियो। इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू ब्रिंग यू सम ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ यस्टरडे, एंड सो वी इन्वाइट यू टू स्टे ट्यून्ड टू द वॉइस ऑफ गायाना एज वी बिगिन दिस मेलोडियस जॉयराइड, one in which we shall recapture the nostalgic memories of yesteryear. Corwin Christian is on the console, and on today's program we are featuring songs by Asha Bhosle, yes, a treasure of unforgettable melodies. Well, let's put the show on the road.